जंगम सर्प है जग के रिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

सुहाग है मस्तक मणि लिखिया, हर हर नाम उरत हरिया, हर हृदय कमल प्रगास। सतगुर सेवन आ

आए, सतगुर पुरख हर ध्यान दा, सतसंगत सतगुर पाए, सतसंगत सतगुर सेम दे, हर मेले गुर मेलाए, एहो भौजल।

गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी जेती सिर्ठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता तो मैं विसर न जाई जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जाने।

पान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाव सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन छिच कवन वार कवन से रुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो वे लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख कुरान चित वार न जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सिर्फी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव

नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात। सैस अठारह कहन कतेबा असलू इक तात, लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप, साला ही साला है एती सुरत न पाया। नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए, समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन। पीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे, अंत न सिकती कहन न अंत, अंत ना करने देन न अंत। अंत ना देखन सुनन ना अंत, अंत ना जापे क्या मन मंत। अंत ना जापे कीता आकार, अंत ना जापे पारावार। अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता आपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत किंथा काल पुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई

जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साद संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान इक संसारी इक पंडारी इक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एका वार कर करवे खै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवे लखवीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के

कौन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जा कह जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिए, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते दे

केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद विनोद कोड आनंद। धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारक करिए बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए। तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुध।

के रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए, सत खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल,

हमारे गावन सुधनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन सुधनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम तेरे सदा सवारे गावन सुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुधनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित परम रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करती फिर हुक्म न करना जाई सो पाता होता पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुरगुरहाई कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले नाही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए

नानक नाम है बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन सुरमस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आ गय कर तरया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, तू के कास्त हरिया रहा, जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया, सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया, उड़े उड़ आवे सह कोसा, पिस्ता छह बकरे चरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निधान दस अस्त सिधान, ठाकुर कर तल तरया, जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया, रागा

कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच।

छह गुरु छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रिश्वे चस्या घड़िया पहरा सिती वारी माओआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तनाश्री मैला पहला गगन में फाल रल चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनों मुहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिल डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पू

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वेखाओ, लेखै साह लवाइए, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवन वाले जेतड़े सब बने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण

कह कछ नाम निवास जित बोले पत पाए सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पले जिन हिरदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान जित सेवे है सुख पाई है तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आया सत परमल तनवास तामुख वो वै उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक सच्चा पा।

पहला तात मिले फुन तात कहो सुस्ती सुप्त समाए लाल गुलाल जह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोषिया हर जप के

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आओ आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान ना जानई क्या किस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कणा पाना नाल कपूर जे तन कंतना भावई ता सब अडंबर कूर सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार जब लग शब्द ना पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक तन

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर अवगुण फिर लागू भय पूर्व जावे तूर बिन शब्द परमाय।

ओ वे परवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करें लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ

ou para você de patar. चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशया अमृत पड़या अघाए नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत किने न पाई है रिद मानक मोल।

कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकते सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पावै दिसंतर देश, अंतर

जिन हर हर नाम न चेत्यो सो अवगुण आवे जाए। जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो सो पौ जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मोल है क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अजैसा सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

तिन हर गुर दर्श न होए, खोटे जात न पत है खोट न सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रखिया।

पानी मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल कालत्र माता तेरे हो है ना अंत सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे होए त्याई जप तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठारह

आओ ऐब तन चुकड़ो इन मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जान है बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी इन मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पन कर साची नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई।

पर पढ़ पंगत जोत की वाद करें विचार मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार लक्ष चौरासी परम दे परम परम होए खुआर।

आप गवाए शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए मन पुखा पुखा मत करें

चुप कट है प्रगास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए। रहाओ हर संतो देखो नजर कर, निकट वसै परपूर, गुरमत जिनी पछाणिया से देखे सदा हदूर। जिन गुण तिन सदमा

जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले इस सच्चे दरबार, कोई अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार। पाऊं रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मलहों में कदे तोय राव, मन मुख नाम न जाननी विन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए, विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता से विस्ता माहि समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए, हर हर नाम ते आये जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे व्यापार, हर नाम सलाहन सवा सदा वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार, ताई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करें गुरमुख नाम ते आए रहाओ, हर पगत हर का

जाए। अंदिन नाम त्याये सहजे नाम समाये। अंदर गच्चे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए। गुर शरणाई सुख लहे अंदिन नाम त्याये रहाओ। साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याये। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्दे मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उर्वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याय एक नाम करता।

मन मुख मोह व्यापिया बैराग उदासी ना होए, सबद ना चीने सदा दुख हर दरगे पथ।

आसा, सतगुर सेव मोह पर जले कर ही माहे उदासा। रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद, एनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद। वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए। अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए, नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे एहो मन ताव तां रहै जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुख हर नाम ते आए नाम निधान सद मन वसै महली पावे थाओ रहाओ। मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरै ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चान।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाई है नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाई है सच सोए असुर संगार है सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिनके बल जा।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए।

देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई, हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई, अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई, हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई। श्री राग महला तीजा। तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े पाइन गुणी निदान, मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे, मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए, गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए, सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए, जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए, चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी अवर न करना जाए, मत तन रत्ता रंग स्यों हों में तज विकार, एनस हृदय रव रहे।

अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

गुरु पाइए हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुरु किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

आप गवाए। हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार। मन मेरे सदा

माया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पग

मन तन शीतल सात्स्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांथी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा।

जा। अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकायन, हर राखिया उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार। मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना, शब्द सवारण हार। रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंदिन नामे रत्या, ज्योति ज्योत समाए। ज्योति हूँ प्रभ जापदा, बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुर पेटिया तिन आए। विण नावे सब डुमणी, दूजे पाए खुआए।

की वाणी हर पाए हर स्यो रह समाए रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाए जिसनो कृपा करे र जाए संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे लेन मिलाए आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए गुरमती हर पाई।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पव सके मन मुख बूझ न पाए जिस सतगुर मेले सो मिले सच्चे शब्द समाए मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना विछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कह पाए अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिंगार हर वर पायन कर अपने गुर कह हेत प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोय रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा।

सरकार। अध्यात्मी हर गुणतास मन जपे एक मुरार, तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार। मन के विकार मन तजे मन चूके मोह अभिमान, आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये मन मुख फिरे दीवान, शब्द नाची ने कथनी बदनी करे बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए, नानक नाम संभाल तू जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा, जग हो मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे भाए, मल हो मैं तोती किवे ना उतरे जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मलहो में जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

रंग ना होए, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरुमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे।

कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभु गुणतास हौं तिस विटो चौखनिए मैं नाम करे परगास मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए बिन नामे जीवन ना थिए मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास तन वड पागिया जो आए मिले गुरु पास जिना सतगुरु पुरख ना पेट्यो से पागहीन बस काल ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए।

गावा त्रिपत मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा हों पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए हों सतगुरु विट्टों वारिया जिन हर प्रभ दी।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार।

ने आए। सतगुरु वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, सेवड पागी वड जानिए, जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वन तिन सबत है, पागहीन नहीं खाए, बिन सतगुरु पल्ले ना पवे, मन मुख रहे बिल लाए। ओए सतगुरु आगे ना निले, ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आठवें, रैन सवाई जाए, आव कटे नर न बुझे, नित मूसा लाज चुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए। पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए। ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दर गए मनिए, हर आप ले गल लाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए। अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चे सोबा पाए। जिनी गुरमुख नाम सलाया, तिना सब को कहे सवास, तिनकी संगत दे प्रभ में।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही बिसरिया।

सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राज महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहिया विच सहते परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थां सनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

तिन सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला कड़ी जिस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बां पकड़ गुर काडे।

अपनाओ आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

उपाव स्याणप सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो में ताप नानक को गुर पेटिया बिन से सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल

जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुपूर है पूरा भया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखा सुख उपजे, दरगह पैदा जाए रहाओ जन्म मरण का पाओ गया, पाओ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रव रहे आप।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ निर्वाण, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजने साचे के गुण सा।

पूरा सतगुरु जे मिले पाए शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए आई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए।

सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रत उर्धार। मेरे मन हर बिन अवर न कोय, प्रभ शरण आई सदा रहो, दुख ना व्यापे कोय, रहाओ रतन पदार्थ मान।

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देस सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कितै न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियें।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल तल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसै।

बात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेयरण सौ सेव तू सौरण सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहार।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरुमंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधार है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारण है, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ, श्री राग महला पंजवा, संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार, रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुरु।

पहला। संत जना मिल पाया कटेड़ा जमकाल, सच्चा साहिब मन मुठा हुआ खसम दयाल, पूरा सतगुर पेटिया बिनस्या सब जंजाल। मेरे सतगुरा हों तुद विटो कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहारने तुस दिता अमृत नाम रहाओ, जिन तू सेविया पाओ कर सही पुरख सुजान, तिना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान, गुरजे वरदाता को नहीं जिन दिता आत्मदान। आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए, सच्चे सेती रतिया दरगह बैसन जाए, करते हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक, सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध विवेक, सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीव है एक। श्री राग महला पंजवा। गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसे पूरन होवे काल रहाओ, गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोए, गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार, गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार, जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा। संत जनों सुन पाई हो छूटन सा चैन आए, गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम, आगे दरगह मनिए मिले निथावे थाव, पाई रे साची सतगुर सेव, सतगुर तुठे पाई है पूरन अलख अभेव रहाओ, सतगुर विटों वारिया जिन दिता सच नाव, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर किस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सही नाम से आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

पाखंड प्रेम न पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए। फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए। नित रवै सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जानी साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंत

त्यों मच्छी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्धक हाथ, गुर राखे से उबरे होर फाथ।

ज्यों जल सोरे मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल काम काम ना आवे खोटी अवगण यार ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार आवण।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग। पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ, बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझना।

एक निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

जाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवऊ, बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे, टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला, चेले ना ही ठाओ। बिन सतगुरु नाव ना पाये, बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना, ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी, ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाइए, जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर पाइए, निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो आपने, गुर पूछ कार कमाओ। शब्द सलाही मन वसे, हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा, साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले, तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा, हर राखें उर्धार। सो क्यों मनो विसारिय, सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी वार। शब्द ही ते पाये, हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको, वढ़ो वडेरी होए। गुर बिन आप ना चीनिए, कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए, हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए, जोबन बाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी, बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए। शब्द मिले रंग होए रहाओ। गुर सेवा सुख पाइए, हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी, गूड़ा हे प्यार। गुरमुख जान सियाणिए, गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी, फिर मोही रंग लाए। मन तन साच विकसिया, कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी, निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे, ता फिर रावे नार। इकत तागे रल मिले, गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे, गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाने रव रहे, ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए, कथन ना पाया जाए। व्यापारी बन जा रहा।

ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाइए बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमुत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हौं मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान नानक।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बक्से भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख कनो, मन तन शांत शरीर। बिन जल करी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी चात्रिक में सर पर थल हरियावले, एक बूंद न पवे के हे। कर्म मिले सो पाई है, किस पया सिर गे हे। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी जल दूध होए, आवर्तन आपे खवे, दूध को खपन न दे। आपे मेल विछुनिया, सच वजे आई दे। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर, चिन पल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर। मनमुख सो जी ना पवे, गुरमुख सदा हजूर। मनमुख गणत गणावनी, करता करे सोए, ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए। गुरमत होए तपाई है, सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो ना कुतई, जे सतगुर ते सोए। ज्ञान पदार्थ पाई है, त्रिभवन सोजी होए।

जग सजया लभ लोभ अहंकार मोह ठगौली हो मुई सावरत संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावे तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर के सबद संतोख जोगी से सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वात वतानु आया नित चलदा साथ देख आखन आते केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटिए मन खोट निराश अष्ट तात पाप साकी करिए शब्द विदास आपे परखे पार तू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब दुखी ठोक बजाए कहने हाथ न लबई सच टिके पत पाए गुरमत तू सालाना होर कीमत कहना जाए जित

आसा अंदर जमिया आसा रस्त खाए आसा बंद चलाइए मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्वे खाई एक तू जो पावे त्यों राख गुरमत साचा मन वसै नाम पलो पत साख हौ मैं रोग दवाई है।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंगन अगन जलाए। हर नाम तुल न पुजे जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नाम तुल न पुजे सब जिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी

ऊंचा आखिया नीच ना दूसै कोई। इतने पांडे साजिया इक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाई तुर बख्श ना मिटै कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकत कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया दर्जे पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

अग्न मरे जल पाई है, जो बारिक दूधे माए, बिन जल कमल सो ना पिए, बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस मिले, जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला। डूंगर देख दरावनो पेयड़े डरियास, ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मेली तरियास, पाई रे पाव जल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले, गुर

नारी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार केहू खेर लाइए छोड़ चले कारबार महर मलूक कहा।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा।

खाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे दे वडियाए, आपे सेव कराए, देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल ना जाई, सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं बसया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस यो राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहार जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वलियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए, जे हर हर की कह बहुत लोची है किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मनिया से भगत पे दर खाए, गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावना सच चुगे गुरु पा।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया कै नित जालिए ओना शब्द ना।

सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुणे पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर। अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए

नानक नाम वडाईया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आ

सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए सदा फिर निंचल पाए ना ओ मरे न जाए शब्द मिली न बिछड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अपूजला बिन गुर पाया न जाए ताज पड़े न बूझई तेखी परम पुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चुकाया गुरमति सह सुहाए

सिर फिरे समाज ना लगे सुवाए। तीने लो व्याप्त है अधिक रही लपताए। बिन गुरु मुक्त न पाए ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है हमें कर्म कमाए। बिन शब्द परम न छू।

ब्रह्म के देते शब्द पछाने, हों मैं जात गवाई सुर नर तिनकी बाणी गावे, कोई न मिटे पाई दैत पुत्र कर्म तर्म किस संयम ना पड़े, दूजा पाव ना जाने सतगुर पेते है निर्मल हुआ, अंधन नाम बखाने एको पड़े एको नाव बूझे, दूजा अवर न जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए सतगुर सेवे ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सोचित लागे आवन जान रहा है पंडित पर पढ़वा।

जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिले सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई, चलना सतगुर भाए। सद बलिहारी गुर अपने बिटों, जे हर सेती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जोगिंदे, हर सेती रंग राता। प्रभ निकट वसे सबना कट अंतर, गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम मिले।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए। मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यों राखे त्यों रहना गुर कै सब।

पाग नौ पाइए गुरमुख सब सुहाई, आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मन मुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया, लक्ष्य राशि फिर फिर आवे दिशा जन्म गवाया। पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी, एक को सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

मना साफ दे पज फैले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तकीवाओ साहिब निताणिया का तान आए न जाई फिर सदा।

गिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चित ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाया साधन संग परीत लश्कर

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उत।

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुद खुआया प्रताप लगा दोहाजनी पाग जिना के ना हो जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै आपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए करम चुकाया दुर्मत का दुख कटिया पाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय।

कहने सतगुरु बाज न पायो सब सत्ती कर्म कमाए जियो। ओं सतगुरु विट्टो कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहे रलाए जियो। तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया जियो पिंड देश आजिया अपने सेवक की तैग रखिया दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न पत्ती वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गो

निर्मल ज्योत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगी आईया मैं रात दे वड़े आईया अनमंग

तिस जेवड़ अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इठड़ा अम अबे खावो मिठड़ा पैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इक तै काणे लायो ने ज्यो पावे तिवे निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सा मैं तिहंडिया पंज किरसान मुझे

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا۔

तब अंतर करे वन जा रहा मित्रा खत्म से ती अरदास खत्म से ती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आ

ज्ञान प्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर।

कर अवगुण पछताए। कहो नानक प्राणी कीजै पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन। अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना। गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मनमुख आवन जाना। खर पक्की पुर पजे बिन से आल चले क्या मान।

मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

वो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ नाहे।

होए गुरुमुख नाम संभाल पुराणी अंते होए सखाई। इहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत।

काम से आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा बिक सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करके सहसा दुख न व्यापे। गुरपुरा पे टैवड पागी आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली। मन प्यारिया

मिलियो हो, आपे ही आप मोहे हो, जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पायरी जाए, गोविंद मन मोहया जियो, संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया, दोख सब जोया, भगत लखन कर वस भये, मन सर्व सुख उठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया, इच्छ पुजाया, बहुर न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे, संसार सागर नहीं पोया, दखना साईं नाम अमोल।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुरपुरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सब्जी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ। कट कट रमैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिए हर आए वसे मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूरब लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुथा गुणतास। हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रह रास रहाओ।

आओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापे जा पत लिखे पाए महला दूजा जिस प्यारे सो ने हो तिस आगे मर चली है त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना पौड़ी तुद आपे तरती साजी है चंद सूरज दोए जीवे दस चार हट तुद साजिया व्यापार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख सीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोय आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरयत करें विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाना सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हों कुर्बाना तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाना। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कबू न कूटसने हो कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत।

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप तमाम दा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता डरिए केत जिना नानक सच पछा।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

नानक जन्म सकार था, जे तिनके संग मिला। पौड़ी, तू आपे जल मीना है, आपे आपे ही आप जाल, तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल, तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल, तू आपे मुक्त कराएदा एक निमख कड़ी कर ख्याल, हर सुदो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा, हुक्म ना जाने बहुता रोवे, अंदर तोखा नींद ना सोवे, जे तन खसमे चले रजाई, दर कर शोभा महल बुलाई, नानक करमी ए मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मन मुख नाम विहूणिया, रंग कुसुम्बा देख ना पुल, इक्का रंग बिन खोड़िया छोछा इसदा मुल, दूजे लगे पच मोए मूरख अंध गवार।

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तडाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाहे जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुखदाता नाम वसे मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सत नाम गुण तास गुरमती आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वडे आई वडे पा

जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास। गुरुमति नाउ पाई है मन मुख मोह विनाश, ज्यो पावे त्यों रास तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सबना रास, सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ मिले इक ना दूर है पास, तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार, अंतर ब्रह्म न की नहीं मन मूरख दावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार, बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार, सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार, नानक शब्द रते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार। पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे ताए, जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम पे आए। गुर सबदी हर पाए हर पार लगाए, मन हट किने न पायो पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा नानक सो तूरा वरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया, गुरुमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया, सोहन सच द्वार नाम प्यारिया। मन मुख मरे अंकार मरण बिगारिया, सबो वर्ते हुकुम क्या करे विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया, नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा गुरपूरे हर नाम दिलाया तिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीरत गाई कर चावन मद दिखाया। हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमति जम जोहे न साके साचे नाम समाया। सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाई लाया, जन नानक नाम ले ता जीवे बिन नावे खिन मर जाया। पौड़ी जो मिलिया हर दीवान स्यो सो सबनी दीवानी मिलिया, जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू उसके मोह जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है नामो परवरिया, नाव पूजिए नाव मनिए नाए किलविक सब।

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाणे ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम।

धार पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की होए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख ली।

इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही जमराव हसे, ऐसा तै जग परम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना। रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना। जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता खसमे मिलना। रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी। जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों। पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना। तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे। मिल मेरे बीथला ले बाहरी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सप तहना परवेसंग। माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ। तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण। ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए। राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाखी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया। तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर गावना।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेनी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चल जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हो रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हो हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर का प्यारा दसे जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया।

सुनिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हौं रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आईए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हो मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हौं गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता।

तिसके हो वारिया मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ इक करी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ता

आया त्रिपत अगाए रहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखा रहा जियो। आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे पोगा आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन पेद लया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक इक पसारिया जियो। माज महला पंजवा जित कर तिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया अनद विनोद तित कर सोहै जो तन कंत सिगारी जियो। सा गुणवंती सावड़ पागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो तन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने सब सिंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सब राई जो फिर कह रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कह न जाए जो फिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो। माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो। खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ स्नाना निवली कर्म आसन चौरासी इनमें सांत ना आवे जियो। अनेक बरख किए जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो। कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल तीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये होरत किते न पाती जियो। निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकाती जियो। अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो। माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माणा

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथा।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहुविध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायण मंत्र पतायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु।

जित मैं सतगुरु मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल कड़िया, तन सो ओए संजोगा जियो, उद्दम करत मन निर्मल होआ, हर मार्ग चलत प्रम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो, अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमासे, नाउ नानक कीने भोगा जियो, माज महला पंजवा, सगल संतन पै वस्त इक मांगो, करो विनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया।

मेरे मुख लागी दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पंजवा विसरना ही एवड दाते कर कृपा भगतन संग राते दिन सरैन ज्यों तुद त्याई एहो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सब किश दिया पलिया जाई अनद बिनोद चोज तमासे तुद पावे सो होना जियो जिस दा दित्ता सब किश लेना छत्ति अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा कोट नानक गुरु चरणा जियो माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुकम रजाई सो ज्ञान त्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करें प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अघाना जियो माज महला पंजवा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यों बारिक पी खीर अगावे ज्यों निर्धन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यों अंधियारे दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख अगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निधान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन उठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना जिन हर साध पाया सो नाहे डुलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मत पागी था जियो हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे तिस लग मुकत पय कनेरे नाम निधाना गुरुमुख पाये कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पय पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जहां को खोजे सर्व उपाय वड पागी दर्शन को विरला पाए ऊंच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय सेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठक बैठक सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किलबिख काटे निर्मल थिया अनद पया निकसी सब पीरा
सगल बिनासे दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा। हत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेटत हो गई बलाए। सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संग राता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया। तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा। सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बिचारा। अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया। सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुर न होई है जौला जियो। माज महला पंजवा। तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया। वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले। मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे। साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा। नाम दान दीजे नानक तो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा। तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली। तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिए भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है। आद मद अंत प्रभ कोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता। अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा। सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी। तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा। से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तिन संग पछाना जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे। किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुगदा पत्थर लीजे। नानक कहो प्रभ पय कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी।
जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जियो सुख पाया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर परे सर सुबर बिरसा कोई।

मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तुन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाय जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीत लाया गुरपूरे वजी वधाई नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मने अधारा भगत जीवे गुण गाए अपारा गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूरे होवे पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुदी मिटी चूका पोलावा गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन के, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे हो।

सर्व जिया को देवनहारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावनहारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं तर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद गुण गाये, बिसर न कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साज संग बिचारा, साधु संग तरी जय सागर, कटिये जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलक अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आसा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो।

हुक्म लगे जिस लिखा जियो। सब परोई इकत तागे जिस लाए ले सो चरणी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा तिन सर्व निरंजन जीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाने

झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये जित सिमरत वर ने चल पाये नानक कौ प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हौ वारी जियो वारी सबद सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हौ किस केरा साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा हौ मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर के शब्द नाम निशाने सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए जम दर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख हो वह तोई बूझे, गुण कह गुणी समावण्या। हों वारी जियो वारी, हर का नाम मन वसावण्या, जो सच लागे से अंदन जागे, दर्श कै शोभा पावण्या। रहाओ आप सुने तै आपे वेखे, जिसनो नदर करे सोई जन लेखे, आपे लाए ले सो लागे, गुरमुख सच कमावण्या। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए, पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए, जिन सतगुर मिलिया से बड़ पागी, पूरे कर्म मिलावण्या। पेयड़े तन अंगदिन सुती, कंक विसारी अवगण मुती, अंगदिन सदा फिरे बिल लादी, बिन फिर नींद न पावण्या। पेयड़े सुखदाता जाता, हो मैं मार गुर शब्द पछाता, सेज सुहावी सदा फिर रावे, सत सिगार बनावण्या। लख चौरासी जी उपाय, जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए, किल बिख का सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावण्या। लेखा मांगे ता किन दिए, सुख नाही फुन दूए तीए, आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावण्या। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे मेल मिलावण्या। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावण्या। हो वारी जियो वारी, इकस क्यों चित लावण्या, गुरमती मन इकट कर आया, सच्चे रंग रंगावण्या। रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे प्रम पूला, दिन नावे दुख पावण्या। जो रंग राते कर्म विदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप देवड़े आई, हर के नाम समावण्या। माया मोह हर चेते नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किछ नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावण्या। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावण्या। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे देवड़े आई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवण्या। अन दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावण्या। जिन सच जाता से सच समाने, हर गुण गावे सच वखाने, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावण्या। माज महला तीजा, शब्द मरे सो मोआ जापे, काल न चापे दुख न संतापे, ज्योति विच मिल ज्योत समाणी, सुन मन सच समावण्या। हों वारी जियो वारी, हर कै नाए शोभा पावण्या, सतगुर सेव सच चित लाया, गुरमती सहज समावण्या। रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए, दूजे लागी

ते सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अब ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोए इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आ

नानक नाम से आए सच राते, जो तिस पावे सो कार करावणिया। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर के शब्द परख पर खाया, जिन सच पल्ले सच वखाने, सच कसवटी लावणिया। हों वारी जियो वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन माहे निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया। रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा, गुरमुख हो वै सोई पाए, आपे बख्श मिलावणिया। मेरा ठाकुर सच दिड़ाए, गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच वरते सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा, किलविख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई है, पै पाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे, आपे दे ना पछो तावे, सबना जिया का एको दाता, सब दे मार जीवावणिया। हर कुद बाजो मैं कोई नाही, हर कुद है सेवी तै कुद सलाही, आपे मेल लहो प्रभ साचे, पूरे कर्म तू पावणिया। मैं होर न कोई तुद है जेहा, तेरी नदरी सीजस देहा, अंदिन सार समाल हर राखे, गुरमुख कह समावणिया। तुद जेवड मैं होर न कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कड़ पन सवारे, नानक नाम सुहावणिया। माज महला तीजा, सब कट आपे भोगण हारा, अलख वरते अगम अपारा, गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याई है, सहजे सच समावणिया। हों वारी जियो वारी, गुर शब्द मन वसावणिया, शब्द सूजे ता मन स्यो लूजे, मनसा मार समावणिया। रहाओ पंच दूत मुहे संसारा, मनमुख अंधे सुध ना सारा, गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे, पंच दूत शब्द पचावणिया। एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते, सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे, हर दर शोभा पावणिया। एकम एक है आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची, सच्चो सच कमावणिया। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सह समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवे, साचे जाए समावणिया। सच्चे बाजो को अवर ना दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख हो वैसो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया। जी जंत सब शरण तुम्हारी, आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी, अंग दिन आपे कार कराए, आपे मेल मिलावणिया। तू आपे मेले वेखे हदूर, सब मैं आप रहा भरपूर, नानक आपे आप वरते, गुरमुख सोजी पावणिया। माज महला तीजा, अमृत बाणी गुर की मीठी, गुरमुख विरले किने चख दीठी, अंतर प्रगास महारस पीवे, दर सच्चे शब्द बजावणिया। हों वारी जियो वारी, गुर चरणी चित लावणिया, सतगुर है अमृत हर साचा, मन नावे मैल चुकावणिया। रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया, गुर प्रसाद किने विरले चित लाया, तुद सला है न रजा कबहू, सच्चे नावे की पुख लावणिया। एको वेखा अवर न बिया, गुर प्रसादी अमृत पिया, गुर के शब्द तिखा निवारी, सहजे सुख समावणिया। रतन पदार्थ पलर त्यागे, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, कह मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तक न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक

आपके रंग तो हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावण्या हों वारी जियो वारी निरपौ मन वसावण्या गुर कृपा से हर निरपौ त्याया बिख पौ जल सब तरावण्या रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जाती कर अवगण पछोतावण्या मन मुख अंधे किछू न सूजे मरण लिखाए आए नहीं बुझे मन मुख कर्म करे नहीं पाए बिन नावे जन्म गवावण्या सच करनी शब्द है सार पूरे गुर पाईए मोख द्वार अंधिन बाणी शब्द सुनाए सच राते रंग रंगावण्या रसना हर रस राती रंग लाए मन तन मोहया सहज सुभाए सहजे प्रीतम प्यारा पाया सहजे सहज मिलावण्या जिस अंदर रंग सोई गुण गावे गुर कै शब्द सहजे सुख समावे हों बलिहारी सदा तिन विटो गुर सेवा चित लावण्या सच्चा सच्चो सच पति जय गुर प्रसादी अंदर पी जय बैठ सुखान हर गुण गावे आपे कर सत मनावण्या जिसनो नजर करे सो पाए गुर प्रसादी हो मैं जाए नानक नाम वसे मन अंतर दर सच्चे सोभा पावण्या माज महला तीजा सतगुर सेवे वड्डी वड्याई हर जी अचिंत वसे मन आई हर जी ओ सफल्यो बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावण्या हों वारी जियो वारी सत संगत मेल मिलावण्या हर सत संगत आपे मेल है गुर सबदी हर गुण गावण्या रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया हर निर्मल हो मैं मैल गवाए दर सच्चे शोभा पावण्या बिन गुर नाम न पाया जाए सिद्ध साधक रहे बिन लाए बिन गुर सेवे सुख न होवी पूरे पाग गुर पावण्या एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावण्या बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए गुर कृपा कर आप जित्ता दिखाए आपे आप मिल रहया सहजे सहज समावण्या गुरमुख होवे सो इक्कस क्यों लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जलाए काया अंदर वणज करे वा पारा नाम निधान सच पावण्या गुरमुख करनी हर कीरत सार गुरमुख पाए मोख द्वार अंधिन रंग रता गुण गावे अंदर महल बुलावण्या सतगुरु दाता मिले मिलाया पूरे पाग मन शब्द वसाया नानक नाम मिले वड्याई हर सच्चे के गुण गावण्या माज महला तीजा आप बंजाए ता सब किछ पाए गुर शब्दी सच्ची लिवलाए सच वनन जै सच संग्रह सच व्यापार करावण्या हो वारी जियो वारी हर गुण अंधिन गावण्या हो तेरा तू ठाकुर मेरा शब्द वड्याई देवण्या रहाओ वेला वक्त सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन भाया सच्चे सेवे सच वड्याई गुर कृपा ते सच पावण्या पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए अनरस चूके हर रस मन वसाए सत संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुरते पावण्या सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा फिर ओए किथों पाएन मोख द्वारा मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावण्या शब्दे साफ जाने ता आप पछाने निर्मल बाणी शब्द वखाने सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौ निध नाम मन वसावण्या सो थान सुहाया जो हर मन भाया सत संगत बह हर गुण गाया अंधिन हर सालाहे साचा निर्मल नाद वजावण्या मन मुख खोटी रास खोटा पासारा कूर कमावन दुख लागे पारा परमे पूले फिरन दिन राती मर जन्मे जन्म गवावण्या सच्चा साहिब मैं अत प्यारा।
पूरे गुर के शब्द आधारा नानक नाम मिले वड्याई दुख सुख सम कर जाननिया माज महला तीजा तेरिया खानी तेरिया बाणी बिन नावे सब परम पुलानी गुर सेवा ते हर नाम पाया बिन सतगुर कोई न पावनिया हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावनिया हर पच्चा गुर भक्ति पाई है सहजे मन वसावनिया रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए जे ही मनसा कर लागे ते हा फल पाए सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावनिया एहो मन मैला इक ना त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी होर वधेरे हौ मैं मल लावनिया सतगुर सेवे ता मल जाए जीवत मरे हर स्यो चित लाए हर निर्मल सच मैल न लागे सच लागे मैल गवावनिया बाज गुरु है अंग गुवारा अज्ञानी अंधा अंध अंधारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे फिर बिस्ता माए पचावनिया मुक्ते सेवे मुक्ता होवे हौ मैं ममता सब देखोवे अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावनिया आपे बक्से मेल मिलाए पूरे गुरते नाम निध पाए सच्चे नाम सदा मन सच्चा सच सेवे दुख गवावनिया सदा हजूर दूर न जानो गुर सबदी हर अंतर पछाणो नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावनिया माज महला तीजा ऐसे साचे सो आगे साचे मन सच्चा सच्चे शब्द राचे सच्चा सेवे सच कमावे सच्चो सच कमावनिया हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावनिया सच्चे सेवे सच समावे सच्चे के गुण गावनिया रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे दूजे पाए माया मन परमावे माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछो तावनिया सतगुरु मिले ता तत पाए हर का नाम मन वसाए शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावनिया किलविख काटे क्रोध निवारे गुर का शब्द रखे उर्धारे सच रते सदा बैरागी हौ मैं मार मिलावनिया अंतर रतन मिले मिलाया त्रिविध मनसा त्रिविध माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके चौथे पद की सार न पावनिया आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राते गुर शब्द रंगाए हर रंग चढ़िया अथ पारा हर रस रस गुण गावनिया गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई गुरमुख कार सच कमावे सच्चे सच समावनिया गुरमुख थापे थाप उथापे गुरमुख जात पत सब आपे नानक गुरमुख नाम ते आए नामे नाम समावनिया माज महला तीजा उत्पत परलो सब दे होवे सब दे ही फिर ओपत होवे गुरमुख वरते सब आपे सच्चा गुरमुख उपाय समावनिया हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावनिया गुरते सांत भगत करे दिन राती गुण कह गुणी समावनिया रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पानी गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडानी सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावनिया तिन करते इक खेल रचाया काया शरीर है विच सब किछ पाया शब्द पेद कोई महल पाए महले महल बुलावनिया सच्चा साओ सच्चे वनजारे सच वनंजे गुर हेत अपारे सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावनिया बिन राशि को वत क्यों पाए मन मुख पूले लोक सवाए बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावनिया एक सच वनन जै गुर शब्द प्यारे आप करे सगले कुल तारे आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावनिया अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले मन मुख अंधे फिरे बेताले जिथे वत होवे तिथों कोई न पावे मन मुख परम कुलावनिया आपे देवे शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावनिया।

सच्चे मेल मिलावण्या हों वारी जियो वारी सच सलाण्या सच ध्यान से सच राते सच्चे सच समावण्या रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानण्या मनसा मार सच समाणी इन मन दीठी सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन नहीं चले निज कर वासा पावण्या गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सच्चा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावण्या जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी हर नाम समाले सेवड पागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावण्या लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे अंदिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावण्या पर परथा के सांत न आई तृष्णा जाले सुध न काई बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे कूर बोल बिख खावण्या गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरते मन अंतर गुर प्रसादी पावण्या माज महला तीजा वर्ण रूप वरते सब तेरे मर मर जमे फेर पवे कनेरे तू एको ने चल अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावण्या हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावण्या तिस रूप न रेखिया वरन न कोई गुरमती आप बुझावण्या रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरते सब थाई ज्योति जोत मिलावण्या तिसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मे पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावण्या गुर का शब्द को विरला बूझे आप मारे ता

गुर के सबद सद रहे समाए, सच सलाहे सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के सबद रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ तिथे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहल तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मन

मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया। गोविंद गोविंद कहे दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुभाए गुर कै पै उजल हौ मैं मल जाए। सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए। सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले। माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए। बाणी वजे शब्द वजाए गुरुमुख भगत थाए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए। माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुरु भगत।

सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया। औ वारी जियो वारी सुख सहज समाध लगावणिया। जो हर सेवै थे सदा सोहै शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए। सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया। सबको सके हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा। जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया। इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निद नाम वखरा मन आए। पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता। तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक स्यों मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे। नानक नाम वसे

पिछू ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। लिख दिया कागज मस्त होई, दूजे पाए सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितलावणिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार, सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे, हो मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे, मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया, तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए, पूरे पाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विवास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वणजे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया, हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया, रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर वस पावणिया, इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदर नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया, गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गा

पंडित होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे।

संत चुगे नित गुरमुख होई, इस्नान करे सदा दिन राती, होमे मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर वसै होमे मार, एनस प्रीत सबद साचे, हर सर वासा पावणिया। मन मुख सदा बग मैला, होमे मल लाई, इस्नान करे पर मैल न जाई, जीवत मरे गुर शब्द विचारे, होमे मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, फट चानन आप पछानणिया। आप उपाय तैं आपे वेखे, सतगुर सेवे सो जन लेखे, नानक नाम वसै कट अंतर, गुर कृपा ते पावणिया। माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया, तै गुण दीसे मोहे माया, गुर प्रसादी को विरला बूझे, चौथे कद लिवलावणिया। हौ वारी जियो वारी, माया मोह शब्द जलावणिया, माया मोह जलाए सो हर्ष्यो चित लाए, हर दर मैली सो बा पावणिया। रहाओ देवी देवा मूल है माया, सिमरत फास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी।

फिर कै सहज रह रंग राती सबद सिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एको रब रहा कत अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावणिया। सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया। मन मुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहु दुख पावणिया। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाणे। नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे।

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा भक्ति परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वडिआई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावणिया। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

पिछो देते जंत उपाहा तुजेवर दाता अवरना स्वामी लवे न कोई लावण्या जिस तू तुथा सो तुद त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल पारे इस दरगे खाक न पावण्या तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा तू बेअंत अत मूचो मूचा।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बनत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करें सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी गुरमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार ब्रह्म।

भक्ति पाए पय पंडारा, दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नगर निहाले, गुण गावे पूरन अगनासी, कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगर न पोहे तिनको, रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आख समाली, मंतन अंतर तुद नगर निहाली, तू मेरा मीत।

तू साहिब सर्व सुख दाता सत संगत जप प्रगटावणिया, तू ऊंच अथाओ अपार अमोला, तू साचा साहिब दास तेरे गोला, तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए, रहाओ संता संगत पाइए, जित जम के पंथ न जाइए, तोसा हर का नाम।

सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए तै दूरे, शरण आवे पार दम की काफिर काहे चूरे, चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे, कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे, पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे, सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

राम जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर ना न मिलिए साजने कत पाये विश्राम जित पर हर कंस न प्रगटी पथ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभु स्वामी कंक विहूनिया।

प्रभ विलो प्राप्त होए वैसाख सुहावा ता लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब निवन। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है।

पास प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर चर

इच पुनी वड पागनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हर।

सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार। ससुर पेय तिस कंत की बड़ा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार। सेवा सा तिस पावसी संता की होय चार दीना नाथ दयाल देव पतित उधार।

नानक जीवे जप हरी दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट गही मन

तब तू का कवन हर पौरी, तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाति, रंग परंग उपार्जना बहु बहुविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमती नाम की आई है सुख रजा जा कुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत सुहावनी जिन हर से की चित लाया श्लोक महला दूजा।

सतगुरु जो अनदिन हर हर नाम के आए ओ आप सुता कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आशा ते निराशा। श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर

परया पर परतोवा। आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा। नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथे। अग्गे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे। पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा। तू गणते किने न पायो सच्चे अलख अपारा। पड़िया मूर्ख आसी है जिस लब लोभ अहंकारा। नाव पड़ी है नाव बुझी है गुरमति विचारा। गुरमति नाम तन खत्या भक्ति परे पनारा। निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्चियारा। जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा। सच्चा सा हो इक तू होर जगत बनजारा। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान सरम।

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माहि निरंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक साचा मन वसे साच शब्द हर नाम समावे। पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पतन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर पड़े पंडार रीते इक खने ताजी रथ तुखार हाथी पाथरे बाग मिलख कर बार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय चे लालती नानक सच दा तार सिनाखत कुदरती। श्लोक महला पहला। नदियां होवे तेनवा सुम होवे दुध कियो सगली धरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। पार अठारे मेवा होवे गरुड़ा होए सुआओ चंद सूरज दो सिर दे रखे नेह चल होवे खाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। जे दे हैं दुख

जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए। खुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज भी चार सबक सुनाया। एक होए असवा

वेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एहो विचार, सिष्टि गंध पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाये खोटे सटिये बार बार, खोटे सच्ची दरगे सुटिये किस आगे करें पुकार, सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार, श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसालता राया, मेर अवद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे दिहंग आदमी, ना सप्त जेर जिमी, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंगलो, ना सप्त दीप नह जलो, अन पौन थिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आसवसे, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंगे ना गिरा जर, द्रक्त आब आस कर।

पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया। मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया, विष्टा अंदर वास साध ना जानिया। गिन नामे दुख पाए।

मीत पवार गया ई उठ रचियों वाद सहवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावण होए महला दूजा सही पूरे साहा जिन्नी पूरा पाया अठी रे प्रवाह रहन इक तैरंग दर्शन रूप अथा विरले पाये करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाये मुठी तंदे चोर महल न पाये इने चित कठोर सेव गवाये जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाये क्यों कर पूरे वट तोल तुलाये कोई ना आखे तत हो।

नदर शरासी बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उथे पाप पुन बिचारी है पूरे कत्ते रास उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोल।

लहे न पुख राजा राज न कृत्या सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेखलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वश है जिन कल रखी तार पौड़ी फसने के दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कदे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदुषिया ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे होते मूल ना उतरे जे सो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शे नाहे तपाई पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिए सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरें जाए मनुख जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पैर च जमे पै मरे पीपो मन में होए नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए महला तीजा पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी है सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानी है सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के हा सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु होए दयाल ता नव निध पाई है सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही ओना

तू सच्चा दातार नित देवे चरण सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दिखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ, तिनको

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान, तिस विच पूख बहुत नै

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ पट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वक्त न जाने। हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले।

हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साग मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए, गौड़ी महला।

रहा होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार।

जय रहा जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कर करते जानिया जप सत तीरथ मज्जन नाम अजक विसार करो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मनो तो पर कर जाओ किस जाचो नहीं को थाओ नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबला।

आ गए होए, ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अपख कहाया अप्योपी आया, हम पै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना। रहाओ चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी इहो संसारो, लग लोभ मुझ

हौ तुद आसा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तवारी, वेल पराई जो है जियड़े, करें चोरी बुरियारी।

मुंदरा से कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वश की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत समझाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस इआना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको सा

एक ते पंख उड़ाए हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा।

अगम बराबर तपे पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती गौड़ी बैरागन।

करे अंत न चाहया जाए अनस को चाहन जो गए से आए अनस गवाए आपन लिया जे मिले ता सबको पाग छु होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए नानक करना जिनकिया सोई सार करे हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई।

तेरा सौ मिले है वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुभाए मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोगी बाप पार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी

साहिब सो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से दे अवन रा गौड़ी गुआरे री मैला तीजा चौक दे

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सत्संग मिलाए हर गुण गावे बैस सोखाए रहाओ। जलो ए जेवा दूजे पाए हर वस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाख्या सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक गावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असने, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राख्या सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए तपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विच्चों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बसे नाम पछाणे, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे देवड़ियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाद साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन ले।

नानक गुरमुख नाम पछाने गौरी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई। रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हो मैं मार गुर शब्द।

जित सेवे दरगह पप परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुद आप पुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तेरी अकथ कथा गुर शब्द वखाणी रहाओ। जय सतगुरु तै सत्संगत बनाई, जय सतगुरु सहजे हर गुण गाई, जय सतगुरु तहां हूं मैं शब्द जलाई, गुरुमुख सेवा महली थाऊं पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरुमुख भगत हर नाम समाए।

आई तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए।

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आस करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को मुक्त न होई। गौड़ी महला तीजा ग्वारे री, सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो, मन साचे राते हर वे परवाहो, सच्चे मैल सच नाम समाहो। सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो पल जल उतरो पार। रहाओ परमे आवे परमे जाए, के जग जन्मया दूजे पाए। मन मुख न चेते आवे जाए, आप फुला के प्रत आप फुलाया, इहो जियो विडानी चाकरी लाया। मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया, कृपा कर सतगुरु मिलाए। एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए, नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए। से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सो जी पाए। हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाए न तेरे आ जाए, हों मैं माया महा बिख खाए। पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए, मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर शब्दी होए। गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, नानक नाम समावे सोए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई। अखुट नाम तन हर कोट न होई, ऐसे सवा सुख दर शोभा होई। ए मन मेरे परम न कीजे, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे। रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे, आप उदरे कुल सगल निसारे। हर का नाम रखे उदारे, नाम रते पौजल उतरे पारे। सतगुर सेवे सदा मन दासा, हो मैं मार कमल पर गासा। अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें

रोग हृदय नाम नित हर रस भोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान ज्ञान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत फिराही।

हर शरणागत राखले हो मूड मुगद निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे इक ओंकार सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तब पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बने आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक ना

प्रीत गुर सिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे, रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा, नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आस।

आगे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिबसै देखे माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए और सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए कूड़ा कच पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाए राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिना मुख लाई तिन कूर त्यागे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रब रहा बनवारी हर आपे तप पापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहा परपूर निकट वसे ना ही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुम आपे हर आपे वेखे विकसे आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारंग अमृत तारा हर अमृत आप पियावन हारा हर आप करे आपे निस्तारा हर आपे बेड़ी

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रात दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वंज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साहु।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिड़ाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर से।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप।

गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गौरी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया, कर मंदर खोल खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे, रहाओ किछ रूप नहीं किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा, क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम।

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पाल की राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं इयाने तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जिन

हर भगत दृढ़ आवे हर भगत सुने ते सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़ी है जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदर हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सब आई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जग के अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरे सिर वेचियो गुर कह मोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंधिन हर गुण गावे मिर सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख शरण आते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर कृपा।

हो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूर मुगध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने, राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है, स्वामी कौ किथे हर पहु नसी है, हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है, सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है, रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुख दाता, जित सेवे निज कर वसी है, गुरुमुख जाए लहो कर अपना।

अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब

चाया हम अपराध पाप बोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। रागौड़ी माज महला चौथा, गुरुमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा। वड पागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतना सदा निर्वाणी जियो, वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवो संतो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत उठड़ा।

मन अनदिन अनग्रहस जियो हर पायणा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदा

हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो। हऊ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो। मेरे मन तन आसा

हर दान देवे सब मंगी जियो, भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए क्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पवजल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो, वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा।

जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुईवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दह सारी, माने रंग पोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाए।

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे परवा।

पंजवां करम पूम में बो हो नाम पूरन होए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास नित गावे हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर्धार सीगर कारज लिहो सवार रहाओ अपने प्रभु से हो सावधान तातू दरगे पावे मान उकत स्यानप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्व जी है जा के हाथ कदे न विछुड़े सबके साथ उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमख माहे होवे तेरी छोट सदा निकट कर।

अविनाशी गुर के बचन कटी जम फांसी, गुर का बचन जी के संग, गुर के बचन रचे राम के रंग, जो गुर दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर्मान, रहाओ गुर का बचन अटल अछेद, गुर के बचन कटे परम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे हार, जिस जन हुए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वडियाई, किस प्रभ को आस पहरते आई, रमैया रेन

अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल। महापुनीत पए सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग। पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम।

सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पा

सिर ऊपर ठाडो तब गाए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

अगम शीत का लाहस तूख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनेक रूप देख नहीं।

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे के गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बै

कृष्णा आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक होए देखिया खान, ताके

अखेड़ गिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कया, सर्व सुख एहो आनंद लया, साध संग हर

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस भोग।

जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग, सर्व सुखा पावो सत्संग, नाम तेरे रहे।

ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत।

हर गुण दावत रसन अमौली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इस ही मदे बस्त अपार इस ही पीतर सुनियत साओ कवन बपारी जाका उहां विसाओ नाम रतन को व्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जो रे।

संगार ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का।

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जा की शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

खैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जसानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राखन।

पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साथ ज्ञान मिटे कलेश सुखी होए रही है ऐसा दाता सतगुरु कही है सो सुख दाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पावे।

अमृत नाम हृदय हर जाते पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुरु पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वेसा हो। गुरु पूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे महला पंजवा। गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुरु दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत।

माया मगन न कछुए मोह है, उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार, आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान, आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस

साहस कर जाती। सत होवन मन लगे न राखी, बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना, दोहा सुरिया का खस

विचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी द्वारे री महला पंजवा हम तनवंत

मेरे मन पया निदाना, रतन लाल जाता कछु न मोल, परे पंडार अकूट अतोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाए, कहो नानक जिस मस्त

रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपतायो। जाका तहया दर्गे चले, सो किसको नजर ले आवे तले। जाका सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा

आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका हर

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

0: कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पए जिन से परम खाट। गौरी महला पंजवा,
1: वडे वडे जोगी से लोग,
0: इनको व्यापे चिंता रोग। कौन वडा माया वडे आई, सो वडा जिन राम लिवलाई। रहाओ पूमिया पूम ऊपर नित लुजे, छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे। कहो नानक ये तत विचारा, बिन हर भजन ना।

राज योग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल परगासे हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निद

जीवन पुरख मिलिया हर राया, कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवा, नाम भगत के प्राण आधार, नामो तन नामो व्योहार, नाम वडाई जन शोभा पाए, कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ। नाम भगत के सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, साफ साफ जन नाम समारे। कहो नानक जिस पूरा पाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम से आया, तब के तावत मन तृप्त आया, सुख विश्राम पाया गुण गाए, श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ। चरण कमल आराध भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंच स्थान तब सहजे पायो, दुख दर्द प्रम पौ नसिया, करण हार नानक मन।

चरण ठाकुर के मार्ग तावो फलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताते बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप।

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल हृद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मन तन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो साफ साफ प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मस्तक पा।

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिल स्या खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभु सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौरी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा गुरु का शब्द रास मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे दिन भगवंत नाही अनकोए मारे राखे को सोए रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार अगन सागर जब उतरे पार गुरु मूरख्यो लाए ध्यान इहा उहा पावे मान सगल त्याग गुरु शरणी आया मिटे अंधेसे नान सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन वसे मन आए जब मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए जाकी दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अक्षर मन में लेख रव रया सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा तै में रचियो सब संसारा तिस पौ नाही जिस नाम अधारा पौ ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना रहाओ सोग हरख में आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभ पाना अगन सागर महा व्यापे माया से शीतल जिन सतगुरु पाया।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे छोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्स पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आए रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किसके

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरुष विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया।

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभ बंदन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रह जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता का।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सज सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुर सोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम देख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल सो लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभ ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभ सोए रहाओ महातप सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए।

हर पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उद्धार पाव

सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगे पाईए मान, गौड़ी महला पंजवा, जल थल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाके सिमरन जम नहीं डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे देहात, गौरी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे, रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो बिक संसार, कर कृपा प्रभु कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कै पंजन प्रभु मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही, रहाओ जाके हृदय बसियो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी महला पंजवा, बार राखियो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग, रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप, गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर विसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे, सोवड पागी निचल खान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाय तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाना, जिन जन मान्या प्रभ का पाना, जग में आया सो परवान, काट काट अपना

सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आठ पैर के आइए गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांस पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

संग राते सुफल फला। सब पैन के तुम्हारे नाए, एकत संग हर हर गुण गाए। रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सो सो रचे जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग जागे। हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौरी मैला पन्नवा उद्दम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए। नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग गई बलाए। रहाओ नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस।

सुख पाया लगदा से पाए आप गया साते पे कृपा निधान की सरनी पे जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहाँ को जाया अस्थिर पे बसे सुख आसन गुरु प्रसाद नानक सुख बासन गौरी महला पंजवा कोट मज्जन की नो स्नान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिटे साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे अनेक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आरादे सिमरत सासत वेद बखाने जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपते प्रभु सो मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय विचारे नानक को प्रभु कृपा धारे गौरी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुरु हृदय बसाया गुरु गोविंद

नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, करण करावन पूर्ण सच सोए। रहाओ अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपौ गाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

फगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मा रस माहे सो प्रसन्न पै केशवा से जन हर गुण गाहे मात पिता सुत

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन का दुख चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे। जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे, ताकी शरण जिन बिसरत नाही। वद भागी हर संत।

को संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पान।

है कोई संत मिला वे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेत

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया है यो परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकट गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त दिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई अंत उपाव करे।

कर कृपा संत मिले मोहि तुमते तीरज पाया संति मंत दियो मोहि निरपो गुरु का शब्द कमाया जीत ले ओए महादुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ से आया रहाओ एक महल तू हुए अठारो एक महल निवानो एक महल तू आपे

में जैसा पेट करावे बाजी दर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

तुम होयो उन मोहनी बाला, उसके कटे नाही रुच चसुआ, जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो, तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ, मार्ग प्रभ को

सदन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी जन मरण को चूक।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा।

एकस के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी। कर्म जराए चराई विपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सुख सोखी ने पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया। जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर गासा।

पूरन होई मन की आशा गुर के त्योहर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त

प्रवराते पोत पोत भगतन संजोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ।

के राखो शरण अनाथ दीन को करो हमारी दासे। तरण सागर बोहत चरण तुम्हारे तुम जानो अपने पाके कर कृपा जिस राखो संगे ते पार कराते ईट ऊंट प्रभ तुम।

गुण की जय। हर नाम मेरा मन जाके, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल कराके, गौड़ी महला पंजवा, सह समायो देव, मोको सतगुर।

अमृत नाम पियो मन कृत्या अनकह ठहरायो। मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पे प्रभु।

जिन तारे ग्रह मंद खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याय रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वरे ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

जीत जन्म के रतन अमोलक, साध संगत जप इक किना रहाओ, सुख संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलियो है मूड नंग, चोआ चंदन देह फूलिया, सो तन कर संग रूलिया, मोहे मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा, मन तर कर दे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुर बोहित पार ग्राम नो, रहाओ काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अतकनी, उबरे जप जप हर गुनी, मतवारो माया सोया, गुर केतत प्रम्पो खोया, कहो नानक।

लख 84 जोल फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापिये सो जने दुख ना व्यापिये जाको गुर हर मंत्र दे सो उबरे।

तू गुर प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया सो

गौरी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर पद तमी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे गौरी महला पंजवा गर्भ

पान प्रभ का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा जिन में साज सवार महारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुख पया जो नाही सो लो रह रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अगथय, कृपा निज प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए, रहाओ एक रैन के पावन तुम आए, बहु जुग आस बदाए, गृह मंदिर संपै जो दिसै, जो तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलख सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, चिन्मय होत पराए।

लिया रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिया रहाओ जोते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो होए दयाल सतगुर अपना ताए मत बुद पाइए मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे सर्व सुखा सुख पाइए शेर स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए।

बिकारी बुरा पला नहीं सुजिए, बुरा पला नहीं सुजिए। अनक बंधन माया परमत परमाया गुंड नहीं पाया, मन बिछे ही मैं लुजिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे, साध संग माया।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला।

सुख रे। हर्ष सोग हान मृत दुख सुख चित संसर गुर मिले राव। जौ लो हो किस सोचो चितवो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर्म

तब हम मुक्त भए। जौलो मेरो मेरो करतो तौलो बिखेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जौलो पोट उठाई चलियो तौलो दान परे पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ। मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने।

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संजम कर्म कमाने यह ओर है मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे ए बिद ओ लोगन ही पति आवे चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सजनी चाक चखाई है नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ चितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रात सच बाप

जोर तुम्हारे सुख बसान सच शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी इक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

पिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाच

खादो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एन सिपागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कठन है किन्हु गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

राम शरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यों चूठो इहो जग, देखता उठतावे, भुगत मुक्त का

जन नानक हर पय दयाला तो संविद बन आए गौड़ी महला नावा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ राव पतित पुनीत दीन बंद हर।

माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों निहो न लावे, नानक मुक्त ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता सुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परसे जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तें बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संग होरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन में कटते रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो ते हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सकल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सह समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इत थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब को पत होई, राह दोवे खत्म एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त पेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार सात पुरधार है, रहाओ जिसके अंतर सात वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैरच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हों में मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार अपारी, बिन गुरु पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका की समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खासा, हरनाकस ले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगार।

जनमे जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, सोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्याग है कवरे, पायु मिले सच साचे फसरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जा रे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसते, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बो नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्तासा, गौड़ी मेला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसार है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, सिख को वाहो वाहो जे वाट दिखावे, जिसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, जिसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो जिसको जिसका इहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी महला पहला, हौ मैं करप देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करप नहीं सच पाई है, हौ मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवे,
हों में खपे जन्म मर आवे, हों में निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज घर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मेला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकद

ओ गुरमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल न जो है, मन मुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल ने चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तप विरोले, सतगुरु देखिया जीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच जोत अपार, जह देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्द परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल।

बिल्कुल शब्द ना छूटी है। देखो बिचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बारे क्या तिन स्यों कही है, बिन गुर पंख ना सूझई चित विद निर्भय है। खोटे को खरा कहे।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला सीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा सात द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ। गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु

परम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन ना सीधो मेरे पाई, भगती सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम वडियाए।

माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परमगत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हौ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाये नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाये कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो

क्यों मिलिए हरमाए गुर पाग पूरे पाया गल मिलिया प्याराए मन करहला सतगुरु पुरख त्याए रहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छड़ाए मन करहला अप निर्मला मन लागी हो मैं आए पर तक पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पालाए उपाय किते ना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिवलाए कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुखकार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख पाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छड़ाए छुटिए सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जम काल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरु।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई तांते इस संग नहीं बहराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा।

हर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

आस जपत पाव अपदा जाए सावत मनुआ आवे खाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर ना छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए।

जाके सहज मन पयानंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कमन स्थान।

जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला। गिर तर तरण गगन अर्तारे रवसस पवन पावक नीरारे, दिनस रैन बर्त अर्पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा। तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती, तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा। जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू, सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना। तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे, तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता। तह सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसे कीर्तन आधारे। पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार, कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे। गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए। ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन झूठ ना तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला। जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी हो।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के

काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा। जित को लाया तित ही

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दव की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंध न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी मैला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिये जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी मैला पंजवा किस गुर को सिमरों सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

जिन गुरमों को दीना जियो अपना दासरा आपे मुरलियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेश पे परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी मैला पंजवा मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जमपुर बादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मद जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तहरिया समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्व सुनाम भगत कौ दीन। रागौड़ी माध महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे असा

मुख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया, हौ वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौं दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अतत कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सैसो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ आयो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंधव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा खनी ना आवे। नानक सातन

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमती सो जानिया नानक नाम न छोड़े सातन, नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन,

हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन कर।

सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनमाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन मिले।

सब दे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन ता।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई ना पावे हाथ निग्रह बे बाने नानक सच कर।

तेरा महल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

हा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे रह न साके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यो मिलिए माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा पिर बिन खरी निमाणी जियो बिन पिर क्यों जीवा।

चित लाये, सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये, गुर शब्द मेला ता फिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे, सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर भर

पानी अन न पावे मरिए हावे दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस दे दीजियो हर कैसे सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमती रंग लाए एहो शरीर कूड़ कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन।

अंतर उर्धारे, अंतर उर्धारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच सबद सिगारे, सच सबद सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कारे सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोय संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भक्ति पाए, सतगुरु बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहता जियो, सबद खेवट विच पाए, सबद खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिये, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यों मरिये, किन में दाम नाम किल विख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, होमे ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाने, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसै कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

आग गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना सबद सुहाए। नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजे नामे दिनसे, नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाए, आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिरा जियो, तन छोड़ परदेश सिधाए। दूजे किने सुख न पायो पिरा जियो, बिख्या लोग लुवाए। बिख्या लोग लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विदानी खरी दुखाली, आप वेच कर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही, छिनछि दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके, जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो, सबद मन ना वसाए। माया का परम अंग पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चित लाए। जिसनो हर जियो कृपा।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग जो प्यासे क्यों मिलिए प्रवदाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीरे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण परपूरे। फिर दोष नाही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो।

जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पै

दाना जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवान।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो प्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराधिये जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नानक

अंत अगमापारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख विदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जगत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अच्युत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना।

हर संत मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा

गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नाशे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभ।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस

को आया, जन्मत मोयो मोनी माया। गर्भ कुंट में उर्ग तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छदाना, देवन हार मने बिसराना। तारो कृपा जिसे गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आव

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवा।

0: पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूटी है।

या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओ आ महली पावे तू बासा जन्म मरण न होए विनाशा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै ना

मधमाते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

आप अवर नहीं हो, हो अनहार होत सद आया, ओ आपा अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो।

यास जपत मन होए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तिसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको माप

पाठ शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सो अनेता, हो आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

परमत पछताते आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर।

जो देना सो दे रहे हो पावे तहते जाए। खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास, खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। खेले बिगसे अनब स्यों जाको होत कृपाल, सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना दानते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न वृद्धि कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफलते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप युगादि हूँ।

जटकत ओही समाहे, पूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, पोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक।

काल ते जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी आप दिवा।

भागा चार कुंट देह दुष्कर्म आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत

छच्छा चार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

आस्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंध कूप ते कढ़ो जे हो वो सो प्रसन्न। ज्ञा कै

पवन बिन नामे सुख नाहे, तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सद के, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

जाके मन तन नाम बसाई, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

ना पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ

नानक गुर ते सिख पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी। फफा फिरक फिरक तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु।

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख हुआ के समत विचारा, नरक सुरग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा। या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो। याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्रगति।

नानक तो फिर दुख न थिया। श्लोक वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु उठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। पौड़ी वव्वा वैर न करिए काहू, कट कट अंतर ब्रह्म समाऊ। वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गवया। वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते। वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बिहानिया, साकत मुगद अजान। रड़क मुए जो त्रिखावंत, नानक कीर्त कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु। रूड़ो जेहे बस्यो रिद माही, हुआ की राड़ मिटत बिन साही। राड़ करत साकत गावारा, जिन ही है अहं बुद्ध विकारा। राड़ा गुरमुख राड़।

पावे खसमता उआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहज पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना मन मुठे सुख होए नानक सब में रब रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कट कट सगल के पूर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभु।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दैव स्टूडन जाए, देवन हार दा पार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ विकार मोह या संपे मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे, नानक पावे

खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दा

जन गुरुदेव बंदक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंबर ए

अक्षर इनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे ताकि एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोए उदार।

अंतर्यामी अपनी गत जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवरना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल है।

उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरग पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन त्यो निर्गुन गुन कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टैल पावे दगे मान किसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा एहो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छदना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए किसका श्रम करे संग संग

पहारे चंदन लेप उतारे धोए दर्द प्रीत पसंद संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहान अंतर अगन बाहर तन सुहारा गल पाथर कैसे करे अथाहा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो और निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कैय तो समझे पोरा कहां विषण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अन

नमस्कारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।

मतलब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद सुख सहदेव बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

होत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सो ज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बासुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलू कत हरे, साध कै संग नरक पर हरे। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध कै संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

कृपाल आप जरे अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग।

चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, जो जो जप

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बंत्र में उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र से छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र,

तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तक के बेटे सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पह सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहे समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानु गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन सास राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे।

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। किसके हाथ होए ता सब किसले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिख्या में रखे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

त्रिन समान कछ संग न जावे। बौलस कर मानक ऊपर करे आस, पल पीतर कांता होए विनाश। सबके आप जाने बलवंत, छिन में होए जाए पसमंत।

अखार, अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार, अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसे गवे।

तब लग धर्म राय देश जाए, तब कृपा से बंधन टूट है, गुरु प्रसाद नानक हों छूट है। सहस खटे लखो उस्तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए, करण कर

कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप

आर अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे है, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जून लवे, संत के दुखन सर्प जून पाए, संत के दुखन त्रिगत जून किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खेंटे करना पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्याग है,

बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़पा गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार।

निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्ग रोग ते ओ हर जन रहत आमदन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मांड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बद पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबाय हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्बे जा सब किश तिसका दिया दरबे आप सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू टहो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़तरे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाये पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख कर देवनहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काए फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए तो वापार विरला वापार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाइए साध संहर की संगाइए अनेक विदंते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे
ओट गई संतै दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए। सब किस किसका ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबके ऊंच निर्मले करनी। पर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोदन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचा की रहत, सच हृदय सतमुख कैत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोदन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्म।

जाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एवं नराओ। मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन परन जा का नेत्र फोर तिस्ता मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके। राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरग्रस्त में भोगी। चाहे चाहे भगत सुख पाया नानक किस पुरुष का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जिन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना देख करे एक रंग। नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाए। नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के समुद्रे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभता सुखदाई विश्वास सत नाम गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रह प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत्ता की गत होए। आप सत की सब सत आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट हो करने हार और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद। सब के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख का तुम्हार जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड़ पागी जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माय समाना। बस्त माय ले बस्त गदाई ताको पिन न कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे।
अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पतराखे ताकि दखमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ ना काटत आप ताको राष्ट्र देकर हाथ। मानस जतन करत बो पाक किसके कर्तव्य से जात। मारे न राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत इहो मन तन तृपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र ताने मंथन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात। करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रहे समाए। जो हुआ हो वत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले मन कन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुरु सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुरु सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुरु सिख का हलक पलक सवार नानक सतगुरु सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जतने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तैसे नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ हो बसे सगल व्याद मंगते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सबली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार हवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए।

है की सरनी अनेक उपारी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कहनाए दैर्ज स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा कह हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का चोकाचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास देद विचारे हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लगता में मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर्बनता इनसे कहो तुम कर्म सना था राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार अहस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कह प्रैत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतर स्मैल बिनस जाए हो मैं विख फैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रास सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मन आहे एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राशक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया को शरणाए नानक की प्रभु बेनती अपनी पगति लाए अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा तूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साज के संग परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रति सुखोए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया इच्छुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपूरे सत्य है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम।

सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तर यह संसार, बिन भगती तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एहि सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन विकसे साध चरण तोय। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजै कर माया, गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जप है सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका, आपसे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत, तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत। जब आपन आप सार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए, तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे पूख कवन तृप्तावे। करण करावन करने हार, नानक करते का नाहि कुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तय वेद कते पा कौचीन।

कहिए चेरा। बिस्मर बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जै अचल अछेद अपेद समाया, उहां किसे व्यापत माया। आप उसको आपे आदेश।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे,

दास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बस

से लाभ मिले तो ताहिर है हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवे साच सा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर

होए, नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रम तो कणो, सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी, चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तन।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कर

भंडार संत संगत में पाइए अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिद, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल तर्म

प्रीत हर नाम न जपें करत विपरीत परत्रय रमें बकें साध निंद करन न सुनहि हर जस बिंद हिरें पर दर्ब उदर कै

आई, अगन ना निवरे तृष्णा ना बुझाए, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखूं तत सोए, मन बस आवे।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्ग रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दे।

कुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप करे आपको तंब स्यों गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख ऊज।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उधार सब कार्य तिनके सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसाबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

ज्यों बोलन तिवै सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

ना कोई सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी जिस साहिब पावे।

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याय तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिन के मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जा सतगुर सरा

कनेरियां जे कर वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटिए मिर संगत सुवरण होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए गुण की साज तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुर गो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्या

सतगुर की री सह होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है ओना अंदर होर मुख होर है बिख माया नो चख मरदे कड़ी है। श्लोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार न लबनी किते थाए पाले जिना सतगुर का आखिया सुखावे नाही तिना मोह पलेरे फिरे दै गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे ओह आप वरते अपनी वथ नाले जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे इक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा जिना अंदर नाम निदान हर तिनके काज दे आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करें साबास साहो पात साहो सब हर का किया सब जन को आए करें रह रास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर ने चल नित बख्शे चढ़े सवाया कोई निंदक वड्याई देख न सके सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगतानो सदा रखदा आया। कौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना तुझ जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कुटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे से कूड़ियार कूड़ा तिन माना नानक सच त्याय तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा अगो दे सत पाओ ना दिच्चे पिछो दे आखिया कम ना आवे अद विच फिरे मन मुख विचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा सब काड़ा अंदेशा परम चुकावे सदा आनंद रहे दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख आखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे उदम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृत शरण आवे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किलविक पाप दोख ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बेंदियां उठदियां हर नाम ते आवे जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन पावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी जो तुद सच त्याय दे से विरले थोड़े जो मन चित इक अराध दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े तुदनो सब त्याय दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कडे मुख खोले मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा मल जूई परया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुखे नो पाया पास न दे कोई बहन जगत में गू पड़ सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख कर कह पेजिया ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया पढ़ सुनिया सबत जगत विच पाई वे मुख सने नफरे पौली पौदी फावा होए कह उठ कर आया अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया हलत पलत दोवे गए नित पुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सत बह आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की
ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫ਼ਰ ਕਿਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਫ਼ਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿਥੋਂ ਪਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਾ

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे। जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे। सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे। जन नानक मांगे तूर तिन, जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए। डरिये ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए। देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए। अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए। सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सत

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होए।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुश्त उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिदू किछ गुजा ना हो।

चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वडभागिया सोहागणी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको को कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोय आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम।

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुरु अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर के सी चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निवाई। जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टो सद कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा, सिर तिन विट्टो तन रोलिया। जो सिख गुर

सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अरादया से जाए रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओ आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ है रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारें।

हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हिरदय नाम समारिया, जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार, सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी एक मन एक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे, तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे, गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रदान करमी सतगुर पाई है।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सबदू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़, विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दित्ते।

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे लय छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत ओह

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्ढे मन वे।

हर भगता हर आराध्या हर की वड्याई हर कीर्तन भगत नित गाव दे हर नाम सुखदाई हर भगता नो नित नामे दी वड्याई बख्शियन नित चढ़े सवाई हर भगता नो थिर करी बहालियन अपनी पैज रखाई निंदका पासों हर लेखा मंगसी बहु दे सजाई जेहा निंदक अपने जिए कमाव दे ते हो फल पाई अंदर कमाना सर पर उगड़े पावे कोई बह तरती विच कमाई जन नानक देख विकसिया हर की वड्याई पौड़ी महला पंजवा भगत जना का राखा हर आप है क्या पापी करिए गुमान करे मूड गुमानिया विस खादी मरी।

था। मन मुख मूलों पुल्लिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब

वैर करम निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबो

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ सरना।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे, नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों, सब किछ जिस कह हा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया।

नानक नाउ जो पंदो तिस्तानी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरत अपना बिनसे सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जाच

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते जो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

फिरै स्वार्थ करे न कोए, जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाऊ मिठा, साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा, एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा। हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस कुल आए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम त्यावो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद न छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक खणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारन कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर नर है जारे राम उदक जल

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गो पाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी, नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कर

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

एक पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कूटा ना पनिहारी गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी साकत मरे संत सब जीवे राम रसायन रसना पीवे कहो कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखो कबीर दद के पोले बिरोले नीर रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे नित उठ हासे ही गय मरे माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरे रसा तल पाए कहो कबीर प्रगट पई खेड ले ले को चूगे नित पेड राम रमत मत प्रगति आई कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूरब जन्म हो तप का ही ना अब कहो राम कवन गत मोरी सजीले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत वर्ष तप किया काशी मरन पया मगहर की बासी काशी मगहर संबिचारी ओछी पगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गज शिव सब को जाने मुआ कबीर रमत श्री राम है। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काठ के संगा इस तन तन की कवन बढ़ाई तरन परे उर्वार न जाई रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम एक खिन लेह ना हर को नाम हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर मरती बार कस बांध्यो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम रमत सुख पावे कृपा करके नाम दृढ़ाई हर हर बात सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंदा सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके जमते उलट पए है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उलट पए है मीता साकत उलट सुजन पए चीता अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया सांत पई जब गोविंद जानिया रहाओ तन में होती कोट उपाद उलट पई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप अब मा

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा।

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन।

जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेहो, जब लग

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

आपी मने मार कवन सिद्ध थापी कवन सो मुन जो मन मारे है मन को मार कहो किस तारे रहाओ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भगत न होई कहो कबीर जो जाने पेओ मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ गौरी कबीर जी ओए जो दिसे अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा बूजे बूजन हार सवागा रहाओ सूरज चंद करहें उजियारा सब में पसरिया।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तां राखे कवना। राम जपत

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पे।

केतक सिद्ध पहले लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो हुए ना आना कह कबीर राम नाम पछाना।

सो सम्राट निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग

आई जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छड़ाए अमृत नाम जपो जप रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर उपकार काड लीन सागर संसार चरण कमल।

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत देखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्माहु को कहो न माने, आप गए औरनहु खोवे, आग लगाए मंदर में सोवे। अब

वो कोई कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौरी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माह निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्मा

पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटो।

पंडित गुणी सूर हम दाते ये कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा। मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में।

आई साठ सूत नवखंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

होए महोए जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो मिले।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल अमो

उन मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरारे अंकस कहो शीश बिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे निरपय हुए न हर पजे मन बौरारे गयो न राम जहाज राहो मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा पर्या

राम नाम तन कर संचौने सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

तिन्ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो, कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया।

लागत पवन खसम बिसरायो, जीरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन में उर्द तप करता, तो जठर अगर मैं रहता, लख 84 जोन प्रम आयो, अब के

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए, ज्यो संपै त्यो विकत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

पासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की

कहां पया नर देवा तोखे क्या जल बोरियो गया था जीरे जाहेगा मैं जाना अवगत समझ आना जत जत देखो।

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डर पे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मर...

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुसे कर जाई। रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चित होए रहो तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कटियो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा जहाँ अबोलते

सस बिगास संपट नहीं आवा, और जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा।

चढ़ सुमेर टूट जब आवा, जे गढ़ गढ़ियो सो गढ़ में पावा। नाना रण रू तो नर नहीं करे, नानवे ना फुन

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आ

फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखे जो कोई दून न परही फंक विचार है ता फल फंक सबे तन फार है। बब्बा बिंदे बिंद मिलावा बिंदे बिंद ना बिछरन पावा।

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन में।

निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तै त्रिभुवन राओ। खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बहुर ना।

निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत

बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जय।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजय विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरे अभिमान। बाहर उदक पखारिये कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होए वो सुच कुंचर विद व्यवहार। रव परगास रज

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, हित रंग नाच।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मेला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन

रहे, दुबदा छोड़ नाम निस्तर है, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पे आगे जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दिसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा भी

पुर लागी मैल मिटे सतनाए गुर प्रसाद रह लिवलाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच करते।

जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निधान हर वार जिन पाया तन नारी हर स्यों राती शब्द विचारी आप तरह संगत कुल तारे सतगुरु सेव तत विचारे हमरी जात पथ सच नाओ कर्म तर्म संजम सत भाओ नानक बखे पूछ न होए दूजा मेटे को सोए हासा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक हर राते रह समाई एक तरन गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले तहों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रम शरीरा हर पग मेरे मन गहर गंभीरा रहा अनत तरंग भगत हर रंगा अंदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे निरारा पूती काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया आद अपार अप

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रस नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए चोक।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद। गुरबिन सो जी बूझ न होए।

सब जप तप जिस हर हृदय अलछा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे।

कारी जन पंच राशि ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

गारी माई हर दर्शन बिन रह न जाई राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

कह कोई जाति स्थावे बख्शे सोई वे प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह।

पग नहीं चाले है, हम देखा तह डूबिये ले, मन एक न चेतस मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा, ना हूँ जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म तया, प्रणवत नानक।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक खटे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे ओथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग दनार।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश बे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पे। साध सहज सुख रस कष्ट जियले, काकड़ छोड़े।

प्रणवे नानक जात कैसी, आसा कर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल उदन करे हार, साहो कजूता कणवत नानक।

इमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला पुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

मां हंडाव जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पाव बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्तूर नादन पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा मेला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सजना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरुष।

जेको नौत आए वड्डा साध करे मनभाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक छुपाए नानक नाम वखाणे।

हर दर्शन पावे वड़ भाग, गुर के सब सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे पीर। जम काल किस नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख साथ।

समाए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विचुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अदम

लागें पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

अंधस जाए मन मुख अंधा ठौर न पाए, बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए पचाए, गुरु की सेवा खुदा सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार आप तरह कुल उदनहार, गुरु की वाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एक छू छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार फुरमाई, बिन शब्द को

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र तलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। रहाओ सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस

कर्म कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावे सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी।

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभु वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर न कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार, आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए, रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए, पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए, आसा मैला तीजा। पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे न आवे जाए, पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख, ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख, रहाओ जिनको हर प्रभु ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए, पूरे सतगुरु दित्ति वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप, कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसे तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा मैला तीजा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए, रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा तगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर के बचन पगत खाए पाए, हर जीव आप वसे मने आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल पगत हर स्यो चित लाए, पगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा से मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है पाये गुर विचार बिन नामे जम के बस है।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया पुरम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ न है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, कराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कठ अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

जाए वडै पास गुरमुखर पाए नाम हीन कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पास कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण करना।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई। नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा। आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई। फल लागे हर रस रसाई, हर हर नाम जप अनक तरंगा। जप जप नाम गुरमुख सालाही, मारिया काल जम कंकर पुयंगा। रहाओ हर हर गुर में पगत रखाई, गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई। हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने, जो कुंचर नाए खाक सिर छाने। जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो। नाम रखो गुरुमुख मन चीता, रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा। नाम लाहा ले गुरुमुख बिगता, नाम बिना पुष्टि मोह अंधा। सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड पागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए।

हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जानी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यागो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत।

आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत तले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

स्थिर होई है। गुर पूरे शाबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहाओ। पूरब लिखे देह से आए माया, चलन आज के काल तुरु फुरमा।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मैला चौथा जन पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया।

हर गुण गाये, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाये, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआये, नानक आपे आप खुआये, गुरमत मन पर गास सच्चा पाये, राग आसावरी कर सोलवा के।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हम हर बिन खिनपल रह न सकूं, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राज शरण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

इस सती पहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साज पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै चौराती तन सुहागना।

कर जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परसाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार है माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख रिहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल कौन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुन उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

जियो पिंड सब हर का देश, जो कुछ करी सो तेरा पान है, तू मेरी ओट तू है दीवान, तुदनो छोड़ जाइए प्रभु के धर।

अमोल रतन अमोलारास विश्व सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद सौदा गुरमुख किने।

माया मूठा चेके नाही, पर में फूला बहुती राही। बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

लागे। आसा मेला पंजवा दुख रोग पए गत संते मन निर्मल हर हर गुण गाए।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन न पतियारा,

बस्तर भी कूफन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साव संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

बिस्ता अस्त्र रख परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

सब अंत ना जाने पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुरु सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया और हद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जाई रहा कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस पर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लोक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार गुरु।

नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

फिर बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमसे बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी गुरमत पाई ले बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुरबोहित सारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पात कच उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुर्मत अपनी

मिलन किए तेरी बरिया अगर काज तेरे किते न काम मिल सौत संगत भज केवल नाम संग जाम लाग और जल करन के जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो जब तक संजम कर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहू नानक हम नीच कर्मा शरण करे।

उठत सोवत जागत विसर नाहि तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

हम आधार अर्ध करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

आगे दरगहे कामना आवे छोड़ चले अभिमानी, काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत सदा।

जाने, कर्म तर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने, संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवो पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा, गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। प्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रेय प्रीत प्राण को त्याग विरला, चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु, नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा, अवर नहीं रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे। रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया। जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता, जाको दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता। कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम ना

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काबू बाते आगे ठोर न पाया रहाओ किस पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जे कोई न राखे ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्यापिया आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा तत जोग ना।

कहां छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनी आदाला, बिरस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा मैला पन्या, उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे, मन में एक अंकारे, तेरा

मुक्ते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत नरक निवारे, नानक गुरुमुख जागे, आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा सामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्णो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुम्हारी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकी

वहाँ कोरते बाँ पकड़ गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना हो ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मुह मलन नींद के छुटकी, कौन अनग्रो पयोरी, मां मोनी तुद ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयोरी। राव काम क्रोध अहंकार गाखरो, संजम कौन छुट्योरी, सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा अग्न बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहोरी, ऐसो समरथ वरण न साको, ताकि उपमा जात न कहोरी। काजर कोट में पई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। इको अंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा मैं।

बहुत सिहाला सगल चरण की इहु मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया। आशा मैला पंजवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक कै माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभु कृपा से मन वस आया, नानक गुरु तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

हुक्म बूझे सोई परवान, साथ सब जाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आशा मैला पन्नवा। जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई, रहाओ तुमरा दिया पहनो खाई, तो प्रसाद प्रभु सुखी बनाई, मन तन अंतर तुझे त्याई, तुमरे लवे ना को उलाई, कहो नानक नित इवे त्याई, गत होवे संते लग पाई, आशा मेला पन्नवा। उठत बैठत सोवत त्याये, मार्ग चलत हरे हर गाये, श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग सगले मन लखा, राव कारज काम बाट काट जपी जय, गुर प्रसाद हर अमृत पी जय, दिन त्रैन हर कीर्तन गाये, सो जम जम की वाट न पाये, आठ पैर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई, आसा मेला पन्नवा। जा कै सिमरन सुख निवास, तई कल्याण दुख होवत नास, अनद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सब सदा मनावो, रहाओ सतगुर का सच शब्द कमावो, फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अनदिन चीना, आसा मेला पन्नवा। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत उह चौकुंत माने, दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट मोह आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पन्नवा। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो,

से पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभु का पावना लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एव सफल भया कहु नानक प्रभ करी मया आसा महला पंजवा। सतगुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर ना उसका मा चूठा मो मिथ्या पसारे रहाओ। गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही ठाओ गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा। आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खुए कै ओही कट कट अंतर।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा मेला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

सोजन इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कह संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अखिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभ शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा, रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन

सारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे उचित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जा के गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध

को जन पूरन रहे अघाई कछु न खोरा हर पगतन को खात खर्चत बिलछत देवन को रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

तेरी देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा अन दिन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड नहीं चल कर पाया साध संग जप्यो हर राय नानक जीवे हर गुण गाए आसा मेला पंजवा दो पुके नावा उनके संग तू करती केल उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लोरे।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तू साख जगत, उनके संग तेरी सब विद्थाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

कृष्णा जय ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पाठ कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार

माथे पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमुख निमुख एही आरा।

उपत होए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन बन जो है। मन कन लागे होए के मीठी, गुर प्रसाद में खोटी दी थी। अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़े नाही बाप न माऊ। मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपाते में सगले सादे। अब मोरे मन पया आनंद, पहुचू का टूटे सब फंद। कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने। एक नाम संकन

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है। जिस मन उठा आप किस ना विसारी है। जो किस करे सो आप आपन पाणिया। भगता का सहाय जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे न चूरी है। नानक दर्श किया।

तिसें अराध मना बिनासे सगल रोग राखनहार अपार राखे अगन माहे शीतल हर हर नाम।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंद्र

पुरख बिराते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन, तो गुर मिल सब सुख ला दे, कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आशा मेला पंजवा। निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वार।

मोकुटंब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहि नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा मैला पंजवा गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना कारण करना कारण करना एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आशा मैला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ

गुण रस रस गावे, एक आसा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आसा महला पंजवा, एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आसा महला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी परम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलसिया। आसा महला पंजवा, कर चौथा,

हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै। प्रभु संग मिली जय, इव मन दी जय।

जाए, प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभु संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे, लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जिह कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान तज

प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए आसा मैला पंजवा। तो बिखम गार तो रह आस प्यास तो मोह, परम ही ते हो रह राव, काम क्रोध लोभ मान ए ब्याद छोरे, संत संग नाम रंग।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पू

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, हम स्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन प्राणहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

अर्थ अभेदिये हां पासों प्रीत कर हां बिनस न जाए मरहा गुरते जान्या हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट कहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मन है निधान लहो हां।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया मैं।

छत्तीस सुजय हाँ पतित उधार ले हो हाँ नानक अरदास के हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक तुका

नाम जिन लय हर तज अन लगे हां जन्मे मर पगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल हुए हां नानक भगत सोए।

अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन का

सिरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमा

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुखदासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुझ नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बक्से आप।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सहपत कोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार,

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाए थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

सात अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण जगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सोपीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मनमुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन

देवाना बन खंड माया मोह हैराना। इत उपजाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ। यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मिले काल कंटक मारे सच पीले। यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तत् ते जन्मा साकत लोभी यो मन मूरा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। यो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर पत राखे। यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास इकत खाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी। यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ।

आसा मेला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सिखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिसको बख्शे नाम जपाए दूत न लाग सके गुनगाए हर गुरुदाता राम गोपाला जो पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया अवर न औखद तंत न मंता हर हर सिमरन किल विखानता तू आप पुलावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा धार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा अमद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर शब्द जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सह समाद पर पुर पार रहे मन माही तुम संसर अवर को नाही जाके भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज ध्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वछल भगता हर संग नानक मुक्त पए हर रंग आसा महला पहला इक तुकी गुर सेवे सो ठाकुर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार बंधन कर्म तर्म हो किया बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तन मोख सरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

आई, कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो कारदार मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हर

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुराणी इकना पेरण।

जाए रुआये, हुक्मी हुक्म चलाए विगसे, नानक लिखिया पाये एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद ऐसा काफी मेला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

जे चलदा ले चलिया किछ संपे नाले, तां संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत्परावो, धर्म भूम सत बीज कर।

पर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जानी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें।

जय गुरमुख नाम ते आईए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाइए परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बने आई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर बाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है, गुर की कार कमाए महल पछाणी है, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

पर खाए, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अनप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाइए।

जिस आप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया।

नीले अग्न जलाये। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन।

तुम्हारे हृदय सिद्ध प्राण आधारी, ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे, तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने, कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी, तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी, जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी, नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी, जा तुझ पावे ता गुरमुख बूझे हो।

गुरु सेवा से सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुरु सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मन वसाए, इहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्म है बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरुमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरुमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख पलक सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सतगुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुर ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सब।

आप वाली द्वितीयन अंतर लोग विकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर पंड

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे।

पंडारा। अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा। मन चिंदिया फल पाए सी, फिर होए न फेरा। पार किया वक्त समाल लई, गुरसो जी होई। नाम पदार्थ अमूल सा, गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्याल है, वक्त करे अंदर भाई। पर में पूला सब जग फिरे, मनमुख पत गवाई। कर दर छोड़े अपना, पर कर झूठा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे शोभा पाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम है।

का बोले नानवे दूजा पाव सुहाओ यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुरु के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

बुझना अबुझना तुद किया के तेरी सरकार एक ना बख्शे मेल लह एक दरगे मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मिलाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उतवताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द

जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज सो सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन।

करें, सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद न आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वपार जो इतला है लायन भगती बे पंडार गुरमुख सदा सुहागणी तै भगत सिंगार अन दिन रावे फिर अपना सच रखे उधार जिन्ना फिर रावया अपना तिना विटों बल जाओ सदा फिर कै संग।

बेटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवैनित पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भगती सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आप खुआयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख वे शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए, रहाओ इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल्दी।

जुग जुग रही समाए, जो तुद पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए, नानक रंग रते नारायण।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है।

कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना। ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा, चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हो आसो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाणे रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

कंत ना कब हूं मैं मिलिया। पप्पे पाप साव परमेश्वर वेखण को परपंच किया। देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रया। फफे पाही सा

अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दा।

पाकड़िया बब्बे बूजे नाई मूड़े परम पुले तेरा जन्म गया अनहोंदा नाव तरायो पांदा अवरा का पा।

राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया तेरा अंत न जाई लखिया अकथ न जाई हर कथिया नानक जिनको।

तन पिरे मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिर के सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलोनड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर, तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कम पैना।

गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम। जग जीवन दाता हर मन राता, सहज मिले मिलाया, साध सभा संता की संगत, नदर प्रभु सुख पाया। हर की पग

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया।

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निद पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख यानी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर सोहेला।

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक।

सतगुरु मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए त्यों कहे नानक सतगुरु मिले तावत थमया निज कर वस्याए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लग्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

जगत ने सारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर पर चय गुर

रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारया ते मनमुख मूड अपा।

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंख दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपते सुनते दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिया।

सुर लिख पाए जियो, हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आमन जान जियो, आमन जाना परम को पागा, हर हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी, हर रस पाया से तन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ

अब क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महाजुद जोध बहु कीने, विच हो मैं पचै पचाए जियो। दीन दयाल गुरु।

हम जाते हर वहाँ प्रभु पकड़ाए दियो, प्रभु वहाँ पकड़ाई उत्तम मत पाई, गुरचरणी जन लागा, हर हर नाम जपिया आराध्या, मुख मस्तक पाग सवागा, जन नानक हर कृपा धारी, मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखन हम तारो, सद देवो सब सुभाए जियो। आशा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करन

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पे दे जान जियो हर दरगे पे दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो।

है जो हर हर नाम से आएंगे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे जिनी गुरुमुख नाम से आए।

कार्य सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सो कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग निदे नौ निदे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिद पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरण तूर वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निद गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा जो राती जल माछली त्यों राम रस माते राम।

आप लिए लड़ लाए, हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटे न दाते, जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे, माल खजीना सुत प्रात मीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानी है, हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा, चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे, ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला, आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा, हर मिले नारायण नानका मन और थो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे, खिन नाहे तरिय प्रीत हरिय सिगार हगरस अर्पिय। जह दुख सुनिय जम पंथ पणिय तह साध संग ना डरपिय। कर कीरत गोविंद गुणिय सगल प्राचत दुख हरे, कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो, हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी, गुरु सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए, कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशी के हम पाहुणिया, अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो कीती है, कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय, मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया, अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी तां डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे, कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे, नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना, कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते, दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार, मंथन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे जप किन्नर गुणपनी, कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार, कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जा।

हारा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी। आसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नानक पयम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाई है। पावन पतित पुनीत नाम

सैंग सूर्या अगाद बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नानक स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का के अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तद आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

छंते। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान से आगो तुम दया। कतहु न पावो शरण पावो, करुणा में प्रभ करमया। समर्थ अगथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप तावे। खिसे जोबन बदे जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रभ मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राखन हारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तय पौन। नाम तारी उधारे पगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर, जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पावन। बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरुष पते भगवान ताकी शरण गही। नेको तय प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिख के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आमन सब रहे। अगन सागर तय शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रहा, पट पट वासी आप विरले किने लया। जय कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या। ब्रह्म पसर्या ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नाम कराव रया। दिन रैन सुहावड़ी आई, सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे। दुख पूख दरिद्र नाथे, प्रगत मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे, मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी, कुल संभुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन, सिमरंत नानक हर हरे। आसा मेला पंजवा, छंत कर सतवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत छंत। पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ विसरना ही किनो। तब मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। बिन हंस नानक सदा जागे, हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी, चाव मंगल रस भरे। अंग संग लागे दुख पागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ त्याई, संजोग सा शुभ गणिया। बिन हंस नानक मिले श्री पर, सगल आनंद रस बनिया। मिल सकी आप पूछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुड़ गुपत अपार करते, निगम अंत न पावे। भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन, आपने प्रभ पानी। बिन हंस नानक रंग राती,
प्रेम सहज समाने। सुख सोए लड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे। सुख सहज सरसे हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सारिया। हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिन से आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया। मोलत कुनड़िया कित कूड लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया। करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी। काल बकड़े जितया,

हर गुण गावी है बिरहाल जाया दर्श पाया अम्यो दृष्ट सिंचंती बिन वंश नारक मेरी इच्छ पुनी मिले जिस को जंती नसवल जो किल विखो परता पर आया दूते देन पया गोविंद।

मन शांत आई बजी बधाई ने अंत जाई पाया बिन वंत नामक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण जय जय तरम करे दूत पहे पलायन परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे पर अनग्रो राख ली ने मोह ममता सब सजे गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सर।

संग देखे करणहारा काहे पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते। वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद्म संगे कुल समूह आतारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करण हारा। खोट न की चई प्रभ पर खुनहारा, कूड़ कपट कमाऊं दड़े जन्मे संसारा। संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर संगौरड़ी अब फिर किछु नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए। मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक बड़ पाग पाइए सुख सहज समाही। आशा महला पंजवा, शंकर अठवा।

पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत। सनमुख सहबान सनमुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत। प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंगन प्रमना। श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप। चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सत ताप। पापा विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अत तना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुण पना। गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमय संत।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा सेज सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

जगत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सच आयन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सचने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नान कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नान गुरमुख जानिए जा को आख करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओ कह सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में कर्म बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद